द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नू सिंह द्वार किया है। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनू होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन।

जा के बड़े ही गहरी विचार विच जा के प्रमाण की। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जाता, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जाता है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं वधे, कहिंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहिंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लै के फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हैं, ते पैरी पै के सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हैं। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हैं भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उन्हां दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते वो दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली बारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहिंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हैं, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हैं। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोनों ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करते हुए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हैं,

मगर भाई साहब भाई गुरदास जी जेड़ी रमज तक पहुंचे कहंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम। ते ए जानदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं, ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता, परदखना लई पैरी पै के गले लगाया और उदे चरण तो के उसनू अपने सिंघासन ते बिठाया। ते सिंघासन ते बिठाण तो बाद उसनू बड़ा प्यार कीता, इतना प्यार कीता। ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे, सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है, इतनी उम्रा हो गई है, बड़ा चिर होया है मिलियानू, कोई गुरु दी सेवा दी कथा सुना।

ना देर दी धरती हजूर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। क्यों बई आज इस दरबार विच सोग क्यों छाया है? संगतां नीवी पा के बैठिया ने, अखां विचों हंजू केरी जांदियां ने, की गल? गुरु गोविंद सिंह महाराज की आख रहे ने? अज सानू शरीर करके सदा वास्ते बछोड़ा दे रहे ना महाराज, इंज ना करना। असी तुहाडे दर्शन कर करके जिउंदे हां, आ तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रही ना महाराज, असी ये विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया, पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच खिलारिया। आप गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां प्रक्रमा कीतियां, पंज पैसे ते नारियल लै के गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नमस्कार कीती। सिंघो अज मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के चलिया, अज तो बाद देह धारी गुरु नहीं होएगा, बाणी गुरु गुरु है बाणी, आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच, जिने मेरे शरीर करके दर्शन करने होण मेरे खालसे दा दर्शन करे, जिने मेरे नाल बचन करने होण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी प्यार नाल पढ़े, मेरा खालसा हमेशा गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझदा रहेगा, ये अपना धर्म भी बचाएगा, दूजिया दा धर्म भी रखेगा, हमेशा ही गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझेगा, सर्वत दा भला करेगा। अज ये बचन आख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। अब्दाली ने वार वार हिंदुस्तान पे हमला किया, हमला करता है, लुट मचा के चला जाता है, तबाही कर जाता है। तैनू कोई रोकण वाला नहीं? हां भाई, हुण तू हिंदुस्तान विच तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का लड़ पकड़ाया ते समझाया सी, सर्वत दा भला करना है, दूजियां दा धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमला किया है, आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे सिपाहियां ने लुट मचा दिती, मंदरां विचों कीमती जेवर चुरा लए, किड्डा पापी है, भगवान दियां मूर्तियां तो भी मुक्त लाई जांदा, होर भी घोर पाप करदा है, घरां विच्चों कीमती समान भी लुट लिया, ते नौजवान बहु बीबियां नूं भी बेटियां नूं भी पकड़ के गड्डियां विच बिठा के इहदे सिपाही लै चले। सतसंगियो, बीबियां ने हाल दुआई मचाई है,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਵਧੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਵਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਾ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਬਈ ਆ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਗੱਡੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਮਚਾਈ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਿਆ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो ही एक फायदा है कि इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं? पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

ब्रह्मांड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोसे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमृतचा दीवान सच्चा तेरा उपनिषद प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चा है सबदान सच्चा है सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सदियां मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे से सगुना सोभ करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बंगेकार एक होंदा खाए चले हैं अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार कोई जी आखे हैं सुख है जाने तिलक तेरी सार नानकू भगता पुख सलाहनु सच नाम आधार सदा आनंद रहे।

भक्तुरी चढ़ चढ़ पवहारी नान पूजन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुख है जिन विचों मोह चुकाया तो मेरी जा रहे।

तीर रोग है दारू थी इस माँ है कृपा करे जी अपनी गुर का शब्द माँ है नान कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्नी बंदे पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अकला।

मूर्ति बखाई, हाथ छुरी जगत का साई। नील वस्त्र पहर होवे प्रवान, मलेश तहां ले पूजे पुराण। अब आखिया का पिठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना। देख है चौका गड्डी कार, ऊपर आ बैठे कूड़े यार। मत बिटे वे मत बिटे, ए आन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन। मन लिखे चुरी बहे तौलन को, सच आइए सुच हो वे ता सच पाइए पौड़ी जिते अंदर सब को। वेख नदरी हेठ चलाएगा आपे देवरे आइए, आपे ही कर्म कराए दा वडो वडा वड मेतरी। सिरे सिर तंते लाए दा नदरो पठी जे करे, सुल्ताना का कराए दा कर मंगल।

आठर तीर्थे नाव है उतरे नाई मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते भले संसार तेन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नाई किसे केरी बात सचे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे दे ता खाहे दीवाने को कलमे का हम तुम हमें दर ले लिखा पीड़ छुटे नान का ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना क्यों कला पे ही तय धारी है देख ही तय अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया तो चल सुन सब कोई आई वारी है जिसके लिए

करो पहला दूजा एक नहीं आशकी ही दूजा लगे जाए नानक आशक काटिए सभी रे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आशक वे ना किए जे लिखे वरते सोए नानक दोवे कुड़िया खाए ना गाई खाए मोड़ी सिंगा सुखाई है सो साहिब सदा संभालिए साकाल बुरी क्यों गाली है मदद लगी दिल में नजर निहाली है जो साहिब नाल हारी।

एक रही चाकरी जित पोगस न जाए। नानक सेव कांडी है जे सेती ही ससु समाए बोड़ी नानक अंतर जापनी हर का के पारवार या प्राय साथी।

सदायंग संगे अपंगं विभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभु सुबं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते सदायंग संगे अपंगं

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया पूरा।

ऐसे गुरसिख भल के उठ कर अमृत वेले सर न हवंदा। गुर के बचन उचार के धर्म साल दी सुरत करंदा। साध संगत विच जाए के गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा। शंका मनो मिटाए के गुरसिखां दी सेव करंदा। किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा।

पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म अधूरे करमियाँ को अपनी

जे लिख बैठे ता आप नड़े गिरिबान में सिर नीवा कर वेख। हुण वेला है आ कीते हुए गुनाह कीते हुए पाप बख्शा लै, संगत विच आ के नाम जप के संगत दी सेवा करके तेरे कीते हुए पाप लै जाणगे। जे इत्थे नहीं बख्शावेंगा ता फिर दरगाह विच तेरा लेखा खड़ोता है। कई कहिंदे हन ए जग मिठा अगला किस डिठा,

पर जदों भगती दी गल आई होवेगी, सतसंगत दी गल आई होवेगी, जदों नाम दी बाणी दी नितनेम दी अमृत वेले जागण दी, गुरु नाल सांझ पा के रहता च रहण दी गल चली होवेगी, मैं आलस कर गया, मैथों उद्यम नहीं होया, काम ही औखा है। सौखे काम नूं तां सारे हाथ मारदे ने, औखे काम कोई कोई करदा, ते जदों ना ना हुंदा होवे, जदों औखा काम ना हुंदा होवे, फिर बंदा किसे नूं आवाज मारदा, आ काम मैथों नहीं हुंदा, जरा हाथ वटाई मेरा। लेकिन भगती दे मामले च असीं किसे नूं आवाज भी किन्नू मारी, जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया, वह अगों आप दुखी, विकारा हथों बहुत बंदे दुखी ने, हैन विरले जेड़े भगती च रते, आप ही तरन जोगे ने, दूजे नूं भी फड़ के तारन जोगे हैं, आप तुरन जोगे ने, दूजे नूं भी तुरन जोगे हैं। पर डर लगता है, पता नहीं कोई बंदा तुरदा होया भी आसरा बन सके कि ना बन सके, ते कई बार ऐसा भी होया बंदा डुब रहा होवे ना, कच्चा तारू उन्हूं बचाउन जावे ते डुबण वाला कच्चे तारू नूं जफा मार के उन्हूं भी डुब लैंदा नाल, पक्का तारू होवे उन्हूं पता होवे कित्थों फड़ना है, इहदे जफे डुबण वाले दे जफे च नहीं आउणा, इहनूं किसे तरीके नाल इहदियां बाहवां लत्तां काबू करके किनारे तक ले आउणा, उह तां लै आवेगा। कच्चा तारू अणतारू जिहड़ा थोड़ा बहुत तरना जाणदा होवे सगों उल्टा आप नाल डुब जांदा, ऐसा ना होवे मैं बुराइयां दा मारिया होवे, किसे भगत नूं बौड़ी करन वास्ते कहां, किसे गुरमुख नूं कहां मेरी भी बांह फड़ लवे, ते ओह अजे अणतारू होवे, ओह मेरी बांह फड़े मैं उहनूं फिर माड़े पासे लै तुरां, नहीं क्यों ना मैं तेरा ही लड़ फड़ां। सर्ब कला प्रभ पूर्णो मुकम्मल है तू, हर तरह समर्थ है मेरे बादशाह, मंझ निमाणी था मैं निमाणी दा होर कोई टिकाणा नहीं तेरे बिना, हर ओट कही मन अंतरे, भगती वास्ते गुरसिखी वास्ते।

पर मेरे ते कृपा कर भगती वाले मालिक ते मैनू धू के ला। उद्दम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ। बहुत उद्दम मैं आपे ही कर लेने, कई गलत तरह के उद्दम मैं आपे ही कर लेने। कमाई वास्ते उद्दम मैं बथेरा किया, उस कमाई नू रोड़न वास्ते बड़ा उद्दम किया। संसार नाल कच्चियां सांझां पाउण वास्ते मैं बड़े उद्दम किए, पर जदों भी सत्संगत दा भगती दा उद्दम करन दा सवाल आया मैं आम तौर ते आलस कर गया। मेरे मालक मेरे ते कृपा कर ते मैनू ओ उद्दम करा। उद्दम करो मैं करदा उद्दम, पर मेरे कोल हुंदा नहीं, काम औखा है ना, मेरे कोल निभदा नहीं। उद्दम करो करावो ठाकर साहब तू करा, ये उद्दम मैं करदा तू करा मेरे तो। और सच जाना जिस वेले यह भावना लैके बंदा तुरे ना, मैं उद्दम करदा ते बाकी सिरे चाढ़न दा काम तू कर। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहंदे ने चरण शरण गुर एक पैंडा जाह चल। तू गुरु की चरण शरण एक कदम चुक, पर एक कदम तो चुकना ही पड़ेगा। जे तू आखे मैं कुछ भी ना करा, मैं बिस्तरे चो कढ़ के लै चले गुरुद्वारे, ये तो नाजायज गल है, ये तो अयोग मंग है। नीयत ही बना लै, तू थोड़ा जहा मन ही बना लै, एक कदम तो चुकना। सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेता, बाकी सबीला महाराज आपे बना देगा। तू नीयत ही बना लै, तू मन ही बना लै कि मैं सिखी दे मार्ग से तुरना, एक कदम तो चुकना। जे तू एक कदम भी नहीं चुकेगा, तू ओदे कोलों की आस करना कि करोड़ा कदम अगे होके तेनू लै तुरे। एक कदम तू चुक, एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, तू अपने सतगुरु नू एक बारी चेते करन मात्र, जबान ते ता लिया तू एक बारी प्यार नाल धन गुरु नानक ता कहो, एक बारी तू प्यार च भिज के वाहिगुरु कह के ता वेख। सिमरन ता है बारंबार गुर हेत है, वो तेनू लखां वार याद करेगा। एक गल प्रसिद्ध है इस्लाम विच, ओह कहिंदे ने कि बंदा एक बारी हाथ उठा के कह देवे ना या खुदावंदा, ते खुदावंद सत वारी कहिंदा है या बंदा या बंदा या बंदा या बंदा या बंदा, सत वारी कहिंदा। लेकिन भाई साहब कहिंदे ने नहीं, बहुत थोड़ी गिनती है। तू एक बारी खुदावंदा कवे वो सत वारी कवे तो बड़ी छोटी भाजी, तू एक बारी याद कर वो तेनू लखां वार याद करन नू बैठे। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है, प्यार नाल याद कर। पावनी भगत पाए कौडी अग्र भाग राख है, अग्र भाग भाव चरणा विच सामने लिया के हाजिर कर दे। एक कौडी भी प्यार नाल अचला के मारन वाली गल ना हो, माफ करना, या दानी बन के ना हो मैं गुरुद्वारे दिते ने ना, इथे ता अर्पण करना, तेरा किया तुझे क्या अर्प, मैं दे की सकना तेरी दात विचों, तेरे ही अगे निगूणा जिया प्यार भेटा करने वास्ते एक जतन है। दे की सकना मैं, मंगता दे की सकना, दाते दे अगे दे की सकना मैं। पावनी भगत पाए प्यार नाल भगती ते प्रेम नाल भिजिया होया, कौटी अग्र भाग राखे ताहे गुर सर्व निधान दान देत है। उस सतगुरु दे पासो ए मंग मंगनी के पातशाह कृपा करो, तुसी उद्दम कर करदे नू करा लो, मैं उद्दम करदा तुसी करा लो, इनू सिरे चाढ़न दी समर्था तुसी बख्शो। उद्दम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग, सतसंगत दे दर्शन करन वास्ते मैं एक कदम चुकना, बाकी तुसी मेरी बाह फड़िया जे जरा। हर हर नाम चढ़ावो रंगण, मैनू नाम दा रंग चढ़ा दियो, पर वेखियो आपे ही तुहानू चढ़ाउणा पैणा, मैथों नहीं पिया चढ़दा, आपे ही प्रभ रंग मन मैं राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हिरदे। तुसी रहमत करो मैं ता तुहाडे चरणा च वसण तो असमर्थ हो गया, तुसी मेरे हिरदे च वस जाओ आके। मैं ता तुहाडी हजूरी च नित रह सकण तो असमर्थ हां, तुसी कृपा करके मेरे हिरदे च टिक जाओ। कर कृपा वसो मेरे हिरदे होए सहाई आप, इहदे च तुसी सहायता करो मेरी, मेरे कोलों इह जतन सिरे नहीं पिया लगदा, मैं हिरदे च तुहाडी मूरत तुहाडा ध्यान वसा लैणा चाहुणा, मैथों वसदा नहीं पिया। मन हुजता करदा है, मन दे फुरने रुकावट बनी चले जांदे ने, संसार दे झंझट मैनूं तुहाडा ध्यान हिरदे च वसाउण नहीं पै दिंदे। कृपा करो कर कृपा वसो मेरे हिरदे होए सहाई आप, मन तन तेरा तन भी तेरा, तन ता तन मन तेरा, तू प्रभ मेरा, हमरे वस किछ नाए।

ज्यों तू राखें, ज्यों ज्यों राखें त्यों त्यों रहना, तेरा दिता खाएं तेरा दिया खाएं। उथे भी कहंदे कर कृपा प्रभ अपनी, जन धूरी संग समाओ, ज्यों तू राखें त्यों रहा, तेरा दिता पहना खाऊं। उद्यम करा जिथे बाकी सारा कोई तेरिया रहमतां नूं मानन दा मैं उद्यम कर रहा, उथे तेरी भगती विच खुब जान दा भी मेरा जतन सफला हो जा। और वैसे भी साध संगत, जिस मनुख दे जीवन च उद्यम नहीं ना, वह बंदा जंग नाल मारिया जाता, किसी वेले भी वह रश्ट नाल मारिया जाएगा, जंगाल मार जाएगा उहदे जीवन नूं। मन नूं भी उद्यम की लोड़ है, तन नूं भी उद्यम की लोड़ है। जिस बंदे दे शरीर च उद्यम नहीं, उहदे मन का उद्यम भी सिरे नहीं लगता। तो जिहदा मन भगती वाले पासे पुरजोर यतन नहीं करता, उहदे शरीर का यतन उद्यम भी बेकार चला जाता। दोवां पक्षां तों उद्यम करन दी लोड़ है। साहिब कलगीधर पातशाह दे पावन दरबार च इक प्रेमी लाल चंद हलवाई नाम दा आया सी। सतसंगत चा के चौंकड़ा मार के बैठिया करे, माला भी हथ च रखिया करे। कई चिर हो गया, सिखां ने आके किया पातशाह लाल चंद कुछ नहीं करदा, जिद्दण दा आया है, कई महीने हो गया कुछ भी नहीं करदा। वेखो ना किवें ढिड कटिया, किवें फैलिया होया, कुछ भी तो नहीं करता। साहिबा ने बुला लिया, लाल चंद भी तेरी शिकायत तू कुछ नहीं करता कि महाराज एवें कहिंदे ने। मैं अमृत वेले जागदा भी हाँ, संगत चा के बैठदा, माला भी फेरदा, मैं बाणी भी पढ़दा कि महाराज सेवा लंगर च नहीं सेवा करना आउंदा। कदे कदे इन्हें सफाई की सेवा नहीं की, कदे कोई संगत की सेवा च हाथ नहीं वटाया। क्यों भाई लाल चंद? कि महाराज जो वह जो भगती जो मैं कर लेना, मैं बाणी जो पढ़ लेना। साहब कहन लगे अधूरा काम कर रहे हैं। लाल चंद इस तरह नहीं सरना, कुछ हाथ पैर भी सफले करने पैणगे। जे शरीर नूं आलस मार गया, तेरे मन का उद्यम की करेगा? तेरी भगती की, बाणी पढ़ी, जब शरीर बेकार हुंदा चला गया, ध्यान देना, शरीर नाल कुछ ना किया शरीर बेकार हो जाएगा, मन नाल कुछ ना किया ते मन बेकार हो जाएगा। साहब कहन लगे शरीर का भी कुछ कर, शरीर नूं भी आरे ला, शरीर नूं भी उद्यम विच रख, इहनूं भी थोड़ा जिहा चुस्त रखण वास्ते, सतर्क रखण वास्ते कोई जतन कर, कुछ भजन अठ सेवा विच करिया कर, लंगर दी सेवा विच, संगत दी सेवा विच। बहुत कम ऐसे ने जिहड़े, और इह गुरु घर दी बड़ी प्यारी व्यौंत है, आ जिहड़ा गुर संगत विच चल के आउणा ना, कई लोग समझदे ने घर च महाराज दा प्रकाश कर लिया साडा सर गया कर। ध्यान देना, गुरु ग्रंथ साहिब घर विच होण धन भाग, गुरबाणी दी स्टडी हर सिख दा कम है, और घर घर अंदर धर्मशाल होवे, इह तां भाई साहिब भाई गुरदास जी गुरु नानक दी रीझ दसदे ने। लेकिन खिमा करना, सतसंगत विच उठ के आ जाना, इहदे किन्ने फल होणगे। एक तां तुसीं सिख भाईचारे नाल जुड़ जांदे, गुरु पुत्रां नाल जुड़ जांदे हो, भरावां नाल जुड़ जांदे, ते दूजी गल इह उठ के आउण विच तुरन फिरन दा उद्यम भी हो जाएगा। आउण जाण दी खेचल जिहड़ी शरीर नूं होवेगी, उह जिहड़ी मॉर्निंग वाक लोग कहिंदे ने अमृत वेले दी सैर, इह सुते सिद्ध हो जाएगी। जिहदे बड़े ही गुण ने, बड़े ही फायदे ने, बड़े लाभ ने। इत्थे आके कोई बंदा जोड़िया च खलो जांदा है, कोई लंगर वाले पासे लग जांदा है, कोई होर किसे उद्यम विच, कितने लाभ हो जाणगे, कितना शरीर नूं फायदा हो जाए। ते बाकी सतसंगत दे आसरे, गुरु चरणां च ध्यान जोड़ के जिसले बाणी नाल अपना मन जोड़ांगे, उस वेले मन भी उद्यम विच आ जाएगा, मन भी सतर्कता विच आ जाएगा। साहिब चाहुंदे ने मनुख दोवें तरह उद्यम विच आ, शरीर करके भी मन करके भी। एक पक्ष भी इहदा कमजोर रह गया ते किवें चलेगा? आखिर मन ने शरीर च ठहरना है। जे मन बेकार हुंदा चला गया, जंग आलूद हुंदा चला गया, यह मन कित्थे टिकेगा? शरीर दीआं लंबीआं उमरां होण, यह चुस्त होवे, कम आउण जोगा होवे, परउपकारी होवे। इस करके इस शरीर नूं सतसंगत दा आहार बख्शिश कीता है, सेवा दा आहार बख्शिश कीता है, ते मन नूं भगती ते सिमरन दा आहार बख्शिश कीता है। जे नहीं हुंदा, आपां एक कदम चुकीए ते बाकी दुहाई महाराज दी पाईए, साहिब कृपा करो, आ थोड़ा जिहा उद्यम मैं करना, बाकी तुसीं करा लो। उद्यम सोई कराए प्रभ, मिल साधु गुण गाओ, ते पातशाह होर कोई आसरा नहीं जिहड़ा मैनूं इस पासे तोर सके। दूजी जाए ना सुझई, किथे कूकण जाओ, अज्ञान बिनाशन तेरी संगत ते तेरा नाम, अज्ञान नूं दूर करन वाला तम हरण, जीवन विचों तमो गुण नूं तमा आदिक नूं कढ़न दा कारण बनदा। उच्चे अगम अमाओ मेरे वाहिगुरु, मन विछड़िया हर मेली है, तेरे नाल टुटा होया मन किसे तरीके नाल मेल लै, अपने नाल जोड़ दे। मन विछड़िया हर मेली है, नानक एह सुआओ, मेरा तां इह मकसद है जीवन दा। सर्व कल्याणा तित दिन,
हर परसी गुर कह पाओ उस दिन सारे सुख हो जाएंगे सारे कल्याण जीवन विच वरत जाएंगे जिस दिन तेरे चरणा

डॉक्टर साहिब की बात जे आखाए कहो नानक क्या दीजे शीश बंदे कर बैसन दीजे।

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी। इस लई कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना है, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई बिपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालिक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता की गोद विच बैठन का सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो माण की कर सकता किसी ते। जिसने कदी पिता कोलों अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी का पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े माण नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सा ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस माण विच आके तान विच आके असी कौन हाँ? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी का, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार का मालिक है साडा। तो असा ये तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु का परिवार हाँ, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस माण विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया, आपां भी माण करिए ना सारे। तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसकी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक अवगुण को न चितार अवगुण को न चितार